0: कोणा ओसुस चितम कोणा से यास्ति तिथि सही कोणा से उठेस किचम ताति तो कुलस इरमान नयर कोइता बीतुन इरमानस असोलोरे नयर ताति तो कुर तिलोरी कुलुरावे मनत कुलात मनत किलात हकिश उयेस कोले कमास उनिश माय इरमानस ताति तुर माय कुपनर कुंपिर दिशि फानी ताति तुरु कुले कमास सकुंस बोस्त मा उचिशिरिस कुंस माय ताति तुरु मनत कुलात मनत किलात नयस्तवर मायरी त कुलगलत खताके कुलगलत उनिशिश तोकिशिश नयरो फिरी तुलोरता मा दुका तो मा नुकु सारता मा फिरी तु कुपनर के चोरो नुकु इरमानस अमे यसोलोरी पचाने उपने के मगता थे कुनेला हील की पकाने मा कोरी तने चे खाई खनी न यन फामी न नक ताती तो मु फिर के मके इरमानो समे न चलो हनी हम इन मई फाचता तुने तुले हनी हम आसन इन मई किल पिचता वो न के हास ताती तो के मके इरमान मगते इरमानो न यन आवे तने कस्तवल को मिलना तो कोरीना किचोरो खाताती दुरु सरहा प्यारे उमन जुमहा प्रीति कुमार होना तुझे कहानी इन में खाची रूतत थानी जमा तो खाच मामा मत खाच मा ताती तू रिस्पोंडी तुम इरमान होना तुझे उसूत बुलाए के उसा उसूत हिलात उकात नहीं है कुमार वक्त इस्ती होनी हो रुक तो नहीं इस मगरा तो नहीं इरमान नहीं अस्ते आज चुचियास उचिंदा लूं सार के इरमान उकात कमोने ताती तू उल्लू से तो इरमान सामे ये सरोरी सीखे लुचान तो इरमान ताती तू सदा दस के किन्याने ताती तू रोज सिर दस के किन्याने इरमान सामे ये सरोरी ताती तू सिर मेरी चोरों को तब तो हम नहीं अमनत कुलाग ताती तू लालो तसीत लग मत ताती तू कोश तसीत लग मत हन हस अरे फ्राम ती मनत कुलाग मनत हिलात उखामरे किरमान लोरिया ताती तू खुमा पी ताती ची कामिना तो इरमान हनी पी आरम असीम तू कालो पुरी मा सफा महतिस ताती तक पुरी अंदा मेरमान अमें या सुनो मैं हिचोरुस्ती वाले शुभुनिक अवाई शुमार उखामर इरमान अमें दूरिया सीखे लुच्छां तो इरमान उखामर इरमान खिसुस हुमा हो पास्ती ग्रार ग्रार अली अंदा इरमान वाले शुमार उकी थके बहुत खताई हालू का तुका आंकुं कताई ना पांकर पाह इरमान खिसुस अमें या सुनो मैं खापन सुमन के अलाव तेरे पिता ताती तो तक हिचोर अलाव पता ताती तो वाल कुछ इरमान अमें या सुनो के इंग्लिश सवाले हम कुत्ता ना इरमानो सो मन के ते अलाव तब इरमान रोज हमार वह मस ने ये सरसन्यान सब अलाव ताऊ तक इरमानो चेक सस ने ये सरसन्यान ये मुनात पुजा के मुनात मिलत ने ये तभी तब पसंद सीते दे अमे ये सनोरी नयान स्ती हमार कर इरमानो पास्तोरिता मिस्ट अनिमास कर नो पद किं पितायाने हिवा सहन ओ ओ चुकियाने दिवाली ओरुस पुरिस्ताना उरा उरा से की सर पास कियाने इरमानो हुखा तरा पुस पुरिशिनी को इरमानो समे यसले का पुला का मना थिला ता मना थिरो ताती तुर योस पै हरयाने किम सरुरियां पी ताकि अमान पी मना थिरो हिन रो रे ते पाले ति लिखो अमान स्पिरितु सांतो लोरे योस लोरे योस लोरे योस ग्रेसा सिन्योर ग्रेसा जीसुस सांतो इरेस पारे Como le fai fumar un nos pejarsma acá te estimulo ta ponti humana y en esta y esta ucata fumar y os pejarsma ta te tu acá upira ta hatsa que le ucata fumar y os pejarsma cabatuna gracias señor gracias para amar espíritu santo Dios mío señor gracias Jesús gracias santo eres padre amén hermano hermana
1: Chastiki, Kitimbi. Amén, hermana. Ahí está, gloria al Señor. La hermana va a pasar. Vamos a dar lugar a la hermana. Amén, bendiciones, hermana. A ver, ¿cómo era que hermana? A ver.
2: Alors, pas, tu as dit, pastor,